0: 3, 4, 3, 4,
1: 5, 5, 5, 6.
2: अहिले बिहानको 9 बज्यो।
1: टाइम चेक का साथमा ओमदयाल सुनसादी उद्योग तथा भाडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बाल मन्दिरमाथि ओखलढुङ्गा।

0: आफ्नै फिल्म टाइम चेक।
1: अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक का साथमा ओम दयाल सुनसादी उद्योग तथा भाडा पसल, सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बाल मन्दिर माथि ओखलढुङ्गा।